0: या चो देमो
1: ओ देमो देमो
0: या चो दे सिंदिनास की दले सुनी तेरंग ले सिंद ग कोड ग नु ग दबे ग साथंग टैलस कुनो दोन द से कर जी
1: ओ ते त चो गोंजन बातन सेरा रोमा तन छमे रोमा नो सोला सोफा तंजला लोसी से कने
0: अरे
1: ओलिनसा जिमिना रोमा चो गचन दसन रोमबे मोलम दे कुम ते छि तना म
0: रोमा चो ग
1: चंदसन रोमबे मोलम
0: चंदसन रोमबे मोलम राजे
1: ओया
0: या तना कब जिमिलेस न कोट गला गो दिमो
1: या देमो